0: रगत को कैंसर, पाचेघर को मुख को कैंसर तथा अन्य कैंसर जांच, दिशा पिशाब तथा खकार जांच, वृय जांच, ट्यूमर मार्कर, विटामिन डी, B12, रक्त अल्पता को जांच लगायत का विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण न्यूनतम शुल्क में गरिनु का साथ ही होल बॉडी चेकअप विशेष छूट में गरिन्छ। त्यसै वैदेशिक रोजगारी में जाने को प्री मेडिकल समेत गरिन्छ।
1: सम्पर्क वालिङ प्याथोलोजी प्राली तल्लो वालिङ अल टाइम फार्मेसी को अगाड़ी।
0: सम्पर्क फोन नम्बर 063590018, मोबाइल 9840516535 र 9813769611।
1: न्यूनतम शुल्कमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणको लागि वालिङको एकमात्र स्वास्थ्य प्रयोगशाला वालिङ प्याथोलोजी प्राली।
2: रेडियो आदिखोला 105.4।

उस्तै, धड़कन उस्तै, धरती उस्तै, आकाश उस्तै, चोट उस्तै, रगत उस्तै, आखिर मान्छे मान्छेमा के नै फरक छ र

परी सुन्न सकिन्छ हाम्रो पात्रमा सजिलो गरी सुनौ बुझौ बुझौ सुनौ हटाऊ कन्फ्युजन ग्याप सोलुसन इट्स अ कुल डुली डट कम ग्याप सोलुसन इट्स अ कुल डुली डट कम